टिजवाले बाबू मेरा गाना चला तो, टिजवाले बाबू मेरा गाना चला तो, टिजवाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो, टिजवाले बाबू मेरा गाना चला तो, टिजवाले बाबू मेरा गाना चला तो, टिजवाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो।

काम करा दूं, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, दूर के देखे जो कोई तुझको कान पे उसके चार लगा दूं, जी भर के नाच लगे बी शैंपेन के शावर में, यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो

0: हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज।
1: लौ आयो है क्वालिटीमा नम्बर 1 दाममा सबैभन्दा कम।
2: ओ प्रकाश।

6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered camera, 3 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।